गुड मॉर्निंग छत्रपति संभाजीनगर, यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM ऑल इज एक्झॅक्टली. आता घड्याळ 7:12 वेळ झालेली आहे. आय होप की तुमची झोप आता पूर्ण झाली असेल. तर उठा उठा, सकाळ झाली आणि गुड मॉर्निंग करण्याची ही वेळ आलेली आहे. तर काय आजचे प्लॅन्स तुमचे? आणि हो, पॉझिटिव्ह वाईब्सने तुम्ही झोपेतून उठतायत ना? कसंही मी कुठेतरी वाचलं होतं, ज्याप्रकारे आपण सकाळी उठतो ना त्यावर पूर्ण आपला दिवस डिपेंड असतो. यानि की अगर आपका मूड बॅड फेज में हो और आप उसी तरीके से मॉर्निंग का आगाज कर रहे हो, तो आपका आने वाला पूरा दिन उसी तरीके से गुजरने वाला. सिंपल सा एग्जांपल अगर दीजिए तो, अगर आप मॉर्निंग में उठे हो और आपका सर दर्द कर रहा हो तो पूरा दिन वो सर दर्द वैसा ही करते रहेगा, चाहे फिर आप कितनी भी गोलियां खा लो. तो इस वजह से कहते हैं कि अगर आपकी मॉर्निंग की शुरुआत एकदम पॉजिटिविटी के साथ हुई, या फिर एक अच्छे थॉट के साथ हो गई, या फिर अच्छे विचारों के साथ हो गई, तो आपका पूरा दिन उसी तरीके से गुजर सकता है. तो सोने से पहले ना एक बात याद रखिए, कोई भी निगेटिव चीज अपने दिमाग में मत लाइएगा ताकि आने वाले मॉर्निंग में उसका इम्पैक्ट कुछ गलत हो. पॉजिटिविटी के साथ अगर आप सोओगे, अच्छे विचारों के साथ सोओगे, तो आपकी मॉर्निंग भी गुड होगी. तो यही था आज का मॉर्निंग थॉट. इसी के साथ आज के शो का आगाज करते. अभी तो मैं आ चुका हूँ, अभी बहुत सारी बातें होगी, मुलाकातें होगी और हसीन नगमों का साथ भी होगा. इसी के साथ आज का क्या दिन स्पेशल है, म्हणजे डे स्पेशल काय आहे ते पण मी तुम्हाला सांगेल, बट थोड्या वेळानंतर. पहिल्यांदा एन्जॉय करा येणारी सुपर डुपर हिट गाणी आजची मॉर्निंग गुड करायला. इन द शो ऑल इज वेल.

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।
1: एक बार एक मूर्तिकार जंगल से जा रहा था। उसे एक बहुत खूबसूरत पत्थर दिखा। उसने सोचा, क्यों ना इससे एक शानदार भगवान की मूर्ति बनाऊं। उसने अपनी छेनी हथौड़ा निकाला और पत्थर पर पहली चोट की। जैसे ही चोट लगी, पत्थर से आवाज आई, आह मुझे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, मुझ पर वार मत करो। मूर्तिकार दयालु था, उसने उस पत्थर को छोड़ दिया, आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर उसे एक दूसरा पत्थर मिला। उसने फिर अपनी छेनी उठाई और तराशना शुरू किया। इस पत्थर को भी दर्द हुआ, लेकिन वो चुप रहा। उसने हर चोट को सहन किया। कुछ घंटों की मेहनत के बाद मूर्तिकार ने उस साधारण पत्थर को एक अद्भुत प्रतिमा बनाई, यानी कि एक मूर्ति बनाई। मूर्तिकार वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद वहां एक मंदिर बना और उसी मूर्ति की स्थापना हुई। लोग दूर दूर से दर्शन करने आने लगे। संयोग से वही पहला पत्थर जिसने दर्द सहने से मना किया था, मंदिर के बाहर सीढ़ी के पास पड़ा था। अब लोग उस पर पैर रखकर अंदर जाते और मूर्ति पर फूल चढ़ाते। एक रात बाहर वाले पत्थर ने मूर्ति से पूछा, भाई तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं और मुझ पर पैर रखते हैं, ऐसा क्यों? मूर्ति ने मुस्कुराकर कहा, दोस्त अगर उस दिन तुमने उन चोटों को सह लिया होता तो आज तुम मेरी जगह होते। तुमने आसान रास्ता चुना, इसीलिए आज तुम पैर रखने के काम आ रहे हो। तो दोस्तों, लाइफ में जब स्ट्रगल वाली चोट पड़े ना, तो घबराना मत, क्योंकि आज का वही दर्द कल आपको एक मास्टरपीस बनाएगा। याद रखिए, हीरा भी घिसने के बाद ही चमकता है। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट, सुनते रहिए ये कहानियों का सफर।
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।

विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
2: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, neuropsychiatrics, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.
3: योर ड्रीम इज टू बिकम एन इंजीनियर, एन आर्किटेक्ट, to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.

0: फरमाइश फरमाइश फरमाइश, आपकी फरमाइश पूरी करना मेरा हक है। फरमाइश आई है मनीषा देशमुख की तरफ से इस बढ़िया से 70s के गाने की।
1: पल पल दिल के पास,
0: पल पल दिल के पास, किशोर कुमार जी की आवाज में बढ़िया सा बेहतरीन सा गाना है। फिल्म थी ब्लैकमेल, 1973 में फिल्म आई थी और इस गाने के लिरिक्स लिखे थे राजेंद्र कृष्णा ने। मनीषा जी की फरमाइश पूरी करते हैं। और हाँ, अगर आपकी भी ऐसी कुछ फरमाइश हो तो हमें व्हाट्सएप करके जरूर बताइए 9359320080 पर। आपकी फरमाइश मैं पूरी करूंगा, ये मेरा वादा है। एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761200.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
5: Admission contact 93717142 65 or visit www.mgmu.ac.in.

0: हेलो, हाँ हाँ आप ही से कह रहे हो। अभी आप घर के बाहर निकल रहे हो तो हेलमेट लिया है ना साथ में? देखिए, चेक कीजिए। आप सोच रहे होगा कि यार ये ऐसा क्यों कह रहा है। अरे क्योंकि 1 सितंबर से अपने शहर में हेलमेट कंपलसरी हो गया है। जी हाँ, पिछले वीक से ना तो वाहतूक पुलिस ने एक मुहिम शुरू केलेली आहे हेलमेट सक्ती बाबत। आणि त्या संदर्भात असं सांगितलं होतं की 1 सप्टेंबर पासून म्हणजे आज पासून हेलमेट कंपलसरी असावा, सगळ्यांनी वापरावा, आणि जे हेलमेट वापरणार नाहीत त्यांना फाईन पे करावा लागेल। सो इस तरीके से ये आज से अपने पूरे शहर में हेलमेट कंपलसरी हो चुका है। सो अगर आप विदाउट हेलमेट बाहर निकलोगे तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा, यानी कि भरना पड़ेगा। बात कुछ ऐसी है कि हेलमेट से ना तो ना पुलिस का फायदा होने वाला है ना प्रशासन का, फायदा तो हमारा ही होने वाला है। क्योंकि खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, आप गिर गए तो सर पर मार नहीं लग सकता अगर आपने हेलमेट पहना होगा। क्योंकि कुछ टाइम पहले ऐसे कुछ एक्सीडेंट हो गए जिसके अंदर छोटे एक्सीडेंट थे बट मार सर पर लगने की वजह से जान तक चली गई है। और ये क्यों हुआ? हेलमेट नहीं पहना इस वजह से। तो घर से बाहर निकलते वक्त हेलमेट यूज कीजिएगा। देखो, हमारी सेफ्टी की जो बात होती है ना वो भी हम सीरियसली नहीं लेते, और हेलमेट से ना तो किसी और का फायदा नहीं होगा, आपका ही होगा। एक तो जान बचेगी, दूसरा फाइन भी पे नहीं करना पड़ेगा। हाँ रुकिए जरा, हेलमेट लीजिए फिर गाड़ी निकालिए, एग्जैक्टली जैसे अभी आपने किया ना। गुड बॉय गुड गर्ल, बहुत अच्छे हो आप लोग, ऐसे रूल फॉलो कीजिएगा। और बाकी मुस्कान की चमकान के साथ अगले गाने एंजॉय कीजिएगा।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: हो अगर रात 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक सोशल मीडिया बंद रहे। कुछ ऑल इज वेल तो नहीं रहेगा, क्योंकि हमें इतनी आदत हो गई है कि सोशल मीडिया से तो दूर हम रह ही नहीं पाते। बट छोटे बच्चे भी ना तो आजकल इसके ऊपर होते हैं और इस वजह से उनकी नींद अधूरी हो रही है, मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, आंखों की प्रॉब्लम आ रही है। तो इन्हीं सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए मेटा एक नया टेस्टिंग कर रहा है, जिसके अंदर बच्चों का जो अकाउंट है वो रात 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। इसमें ना स्टोरीज दिखेगी ना रील्स दिखेंगी, हाँ बस मैसेज सेंड हो सकते हैं ऐसा इसमें है। बाकी टाइम वो अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। एंड इंस्टा और फेसबुक, इन दोनों के लिए ये टेस्टिंग शुरू है। इसी के साथ अगर स्कूल के आसपास बच्चे हो गए तो सुबह 8 से लेकर 3 बजे तक नोटिफिकेशन बंद रहेंगे सोशल मीडिया के, ताकि बच्चों का ध्यान भटके ना। और हमारे बच्चे सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं, किस तरीके के वीडियोज उनके फीड में आ रहे हैं, ये सभी चीज़ें पेरेंट्स भी अपने मोबाइल पर देख सकते हैं सेकेंडरी अकाउंट्स उसको अटैच कर, ताकि उनका बच्चा किस टाइप्स की वीडियोस देख रहा है ये पेरेंट्स को पता चले। बच्चों के अकाउंट का पूरा कंट्रोल पेरेंट्स के हाथ में रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नॉन अल्गोरिदमिक फीड आएंगी, यानी कि जो वायरल चीज़ें होती है वो हर किसी के फीड पर दिखाई देती, लेकिन बच्चों के अकाउंट पर किस टाइप के वीडियोज कॉन्टेंट आने चाहिए ये पेरेंट्स चूज कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। बट अब ये कब आएगा इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है, बिकॉज अभी बस मेटा इसकी टेस्टिंग कर रहा है। अगर टेस्ट कंप्लीट हो गए तो इस तरीके के नए रूल्स और रेगुलेशन और एक्सेस पेरेंट्स के हाथ में आ सकते हैं सोशल मीडिया को लेकर अपने बच्चों के लिए, ताकि बच्चे सोशल मीडिया का लिमिटेड यूज करें और रात 12 से 6 के दरमियान वो पूरा बंद रहे, ताकि उनकी नींद कंप्लीट हो। और ये मुझे लगता है बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है। इस पर आपके क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है बताइए जरा डीएम कीजिएगा इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर। और बाकी तो आप भी चाहो क्या हम सभी का मोबाइल ऐसे ही रात 12 से 6 के दरमियान बंद रहे, क्योंकि बस बच्चे नहीं अडल्ट हम सभी लोग ना तो आधी रात तक बस इंस्टा स्क्रॉल करते रहते हैं। करते हो ना आप? एग्जैक्टली, सभी करते हैं। स्टे ट्यून
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एंड फाइव।

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761200.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा।
4: For admission, contact 937171 4265 or visit www.mgmu.ac.in.

बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझे एक पता चली जो आपको भी जानना बहुत जरूरी है ऐसा मुझे लगता है। और हम सभी ने ना तो अपने शहर का ये सुपर डुपर हिट गाना तो सुना ही होगा जिसके बिना हमारी सुबह दोपहर शाम आजकल होती नहीं है। और एक गाने में एक अलग वाइब तो है यार, और जैसे गाना प्ले होता है तो हम सभी लोग घर के बाहर आते हैं।

और यू नो व्हाट, ये जिंगल किसने गाई है पता है? ये जिंगल गाई है शान। जी हाँ, बॉलीवुड के सुपर डुपर हिट सिंगर शान की आवाज है। मुझे भी अभी पता चला था, आई थिंक मुझे बहुत लेट पता चला होगा ऐसा लगता है, और बहुतों को पता भी होगा, किसी को नहीं होगा तो पता चल जाएगा। और ये ऐसी जिंगल है ना भाई, अपने लवों पर ही आ ही जाती है। और आजकल हम सभी की नींद ना तो किसी अलार्म से नहीं बल्कि इस जिंगल की वजह से खुलती है। अपने शहर में ना तो सफाई भी आजकल बहुत दिख रही है, एंड ये जो घंटा गाड़ी है अब रात के वक्त भी और दिन भर भी हर एक गली मोहल्ले में आती है, कॉलोनी में आती है और पूरी सफाई करती है। इससे आई होप कि बहुत जल्दी अपना शहर भी एकदम साफ सुथरा हमें नजर आएगा। एक नंबर हुईल छत्रपति संभाजी नगर, सो स्टे ट्यून्ड।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

है, जिसका मतलब होता है देखिए ना कि इरशाद कामिल के लिखे इस गाने ने, एआर रहमान जी के म्यूजिक ने हम सभी को ना तो एक साथ जोड़ के रखा है। ऐसे इस वजह से ना तो ये गाना हमें इतना पसंद आता है और इतना सुकून देता है, और इन सभी का मतलब एक ही होता है।

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
4: For admission, contact 937171 4265 or visit www.mgmu.ac.in.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: ए वो एक पे पिक्चर आ रही है ना?
3: कौन से?
2: बॉडीगार्ड, उसका टाइटल सॉन्ग एकदम फाड़ू है।
4: अच्छा, हीरो कौन है उसका?
5: तेरी।
4: अरे

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: खड़ा।
1: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
2: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
1: ये है MGM 90.8 FM।

0: wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
5: Admission contact 9371714265 or visit www.mgmu.ac.in.

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एनजीएम 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है FGM 90.8 FM।

आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

Oh,

ਕੱਟੜੀ ਵਾਂਗੀ ਵੱਲ ਪਾਪੜੀ ਮੱਕਿਆ ਕੱਢੋ ਨਿੱਤ

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है FM 90.8।

0: थिएटर के पीछे समर्थ नगर छत्रपति संभाजी नगर और दिशा हॉस्पिटल संत तुकाराम नाट्यगृह रोड फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस सिडको N5 छत्रपति संभाजी नगर।
1: NGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join NGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
4: For admission, contact 93717142 65 or visit

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थनगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
3: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761200.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
5: एडमिशन कॉन्टैक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।

0: जल।
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: हेलो, हाँ हाँ आप ही से कह रहा हूँ। अभी आप घर के बाहर निकल रहे हो तो हेलमेट लिया है ना साथ में? देखिए चेक कीजिए। आप सोच रहे होगा कि यार ये ऐसा क्यों कह रहा है? अरे क्योंकि 1 सितंबर से अपने शहर में हेलमेट कंपलसरी हो गया है। जी हाँ, पिछले वीक से ना तो वाहतूक पुलिस ने एक मुहिम शुरू केली आहे हेलमेट सक्ती बाबत, आणि त्या संदर्भात असं सांगितलं होतं की 1 सप्टेंबर पासून म्हणजे आजपासून हेलमेट कंपलसरी असावा, सगळ्यांनी वापरावा, आणि जे हेलमेट वापरणार नाहीत त्यांना फाईन पे करावा लागेल। सो इस तरीके से ये आज से अपने पूरे शहर में हेलमेट कंपलसरी हो चुका है। सो अगर आप विदाउट हेलमेट बाहर निकलोगे तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा, यानी कि भरना पड़ेगा। बात कुछ ऐसी है कि हेलमेट से ना तो ना पुलिस का फायदा होने वाला है ना प्रशासन का, फायदा तो हमारा ही होने वाला है, क्योंकि खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, आप गिर गए तो सर पर मार नहीं लग सकता अगर आपने हेलमेट पहना होगा। क्योंकि कुछ टाइम पहले ऐसे कुछ एक्सीडेंट हो गए जिसके अंदर छोटे एक्सीडेंट थे बट मार सर पर लगने की वजह से जान तक चली गई है। और ये क्यों हुआ? हेलमेट नहीं पहना इस वजह से। तो घर से बाहर निकलते वक्त हेलमेट यूज कीजिएगा। देखो हमारी सेफ्टी की जो बात होती है ना वो भी हम सीरियसली नहीं लेते, और हेलमेट से ना तो किसी और का फायदा नहीं होगा, आपका ही होगा। एक तो जान बचेगी, दूसरा फाइन भी पे नहीं करना पड़ेगा। हाँ रुकिए जरा, हेलमेट लीजिए फिर गाड़ी निकालिए, एग्जैक्टली जैसे अभी आपने किया ना। गुड बॉय गुड गर्ल, बहुत अच्छे हो आप लोग, ऐसे रूल फॉलो कीजिएगा। और बाकी मुस्कान की चमकान के साथ अगले गाने एंजॉय कीजिएगा।
1: Only on MGM 90.2.

0: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
3: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

0: 93.8 FM।
1: ये गाना तो हम सभी ने सुना है, लेकिन इसका मतलब आपको पता है? कुन फयकुन, ये डायरेक्टली कुरान से आया है और इसका मतलब होता है खुदा ने कहा हो और हो गया। अब यही एक सेम चीज ना तो हमें बाइबल में भी दिखती है। बाइबल में लिखा है When God said, Let there be light and there was a light। कुछ ऐसा इस गाने का एक मैजिक है। और इसी गाने में एक और लाइन है जो कि सीधे आई है ऋग्वेद से। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में संस्कृत में लिखा है, जिसका मतलब होता है देखिए ना कि इरशाद कामिल के लिखे इस गाने ने, एआर रहमान जी के म्यूजिक ने हम सभी को ना तो एक साथ जोड़ के रखा है। शायद से इस वजह से ना तो ये गाना हमें इतना पसंद आता है और इतना सुकून देता है। और इन सभी का मतलब एक ही होता है,

0: wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
5: Admission contact 937171 4265 or visit www.mgmu.ac.in.

किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM। रोज एक फोन आता है और फोन उठाते ही एक ही सवाल, बेटा खाना खा लिया। कभी कभी ये सवाल इतनी बार बार सुनने को मिलता है कि हम बस कह देते हैं हाँ माँ खा लिया ना, चाहे खाया हो या ना खाया हो। लेकिन जब पढ़ाई, नौकरी या जिंदगी हमें घर से दूर ले जाती है, तब समझ आता है कि माँ का ये सवाल सिर्फ खाने के बारे में नहीं था। वो पूछ रही होती थी, तुम ठीक हो ना, किसी बात की टेंशन तो नहीं, अपना ख्याल रखते हो ना, मेस के खाने से पेट भरता है। वैसे यार माँ के हाथ का खाना तो खाना ही होता है, वो सिर्फ पेट नहीं दिल भी भरा देता है। फिर एक दिन फोन नहीं आता, माँ किसी काम में होती है या हम इतने बिजी हो जाते हैं कि मिस कॉल हो जाता है और अजीब सी बेचैनी होने लगती है। तब एहसास होता है कि जिस सवाल से कभी चिढ़ जाते थे, वही सवाल हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी तसल्ली थी। इसलिए आज अगर माँ का फोन आए और वो पूछे बेटा खाना खा लिया, तो बस हाँ कहकर फोन मत काट देना, थोड़ी देर बात कर लेना, उनसे भी पूछना माँ आपने खाना खा लिया। क्योंकि माँ अक्सर सबको खाना खिला देती है, पर अपनी भूख सबसे आखिर में याद करती है। और यकीन मानिए, इस एक सवाल से उनके चेहरे पर जो मुस्कान आती है, उसका कोई मोल नहीं होता। समझे? किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

रहा हूँ अगर रात 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक सोशल मीडिया बंद रहे। कुछ ऑल इज वेल तो नहीं रहेगा, क्योंकि हमें इतनी आदत हो गई है कि सोशल मीडिया से तो दूर हम रह ही नहीं पाते। बट छोटे बच्चे भी ना तो आजकल इसके ऊपर होते हैं, और इस वजह से उनकी नींद अधूरी हो रही है, मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, आंखों की प्रॉब्लम आ रही है। तो इन्हीं सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए मेटा एक नया टेस्टिंग कर रहा है, जिसके अंदर बच्चों का जो अकाउंट है वो रात 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। इसमें ना स्टोरीज दिखेगी ना रील्स दिखेंगी, हाँ बस मैसेज सेंड हो सकते हैं ऐसा इसमें है। बाकी टाइम वो अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। एंड इंस्टा और फेसबुक, इन दोनों के लिए ये टेस्टिंग शुरू है। इसी के साथ अगर स्कूल के आसपास बच्चे होंगे तो सुबह 8 से लेकर 3 बजे तक नोटिफिकेशन बंद रहेंगे सोशल मीडिया के, ताकि बच्चों का ध्यान भटके ना। और हमारे बच्चे सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं, किस तरीके के वीडियोज उनके फीड में आ रहे हैं, ये सभी चीज़ें पेरेंट्स भी अपने मोबाइल पर देख सकते हैं सेकेंडरी अकाउंट्स उसको अटैच कर, ताकि उनका बच्चा किस टाइप्स की वीडियोस देख रहा है ये पेरेंट्स को पता चले। बच्चों के अकाउंट का पूरा कंट्रोल पेरेंट्स के हाथ में रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नॉन अल्गोरिदमिक फीड आएंगी, यानी कि जो वायरल चीज़ें होती वो हर किसी के फीड पर दिखाई देती, लेकिन बच्चों के अकाउंट पर किस टाइप के वीडियोज कॉन्टेंट आने चाहिए ये पेरेंट्स चूज कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। बट अब ये कब आएगा इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है, बिकॉज अभी बस मेटा इसकी टेस्टिंग कर रहा है। अगर टेस्ट कंप्लीट हो गए तो इस तरीके के नए रूल्स और रेगुलेशन और एक्सेस पेरेंट्स के हाथ में आ सकते हैं सोशल मीडिया को लेकर अपने बच्चों के लिए, ताकि बच्चे सोशल मीडिया का लिमिटेड यूज करें और रात 12 से 6 के दरमियान वो पूरा बंद रहे, ताकि उनकी नींद कंप्लीट हो। और ये मुझे लगता है बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है। इस पर आपके क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है बताइए जरा डीएम कीजिएगा इंस्टा पर RJ Adnan इस इंस्टा पेज पर। और बाकी तो आप भी चाहो क्या हम सभी का मोबाइल ऐसे ही रात 12 से 6 के दरमियान बंद रहे, क्योंकि बस बच्चे नहीं अडल्ट हम सभी लोग ना तो आधी रात तक बस इंस्टा स्क्रॉल करते रहते हैं। करते हो ना आप? एग्जैक्टली, सभी करते हैं। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
3: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

0: 89 और 9518315455।
1: कधी कधी ना जगण्याची छोटी हो।

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होमियोपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
5: एडमिशन कॉन्टैक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।

बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझे एक पता चली जो आपको भी जानना बहुत जरूरी है ऐसा मुझे लगता है। और हम सभी ने ना तो अपने शहर का ये सुपर डुपर हिट गाना तो सुना ही होगा जिसके बिना हमारी सुबह दोपहर शाम आजकल होती नहीं है। और एक गाने में एक अलग वाइब तो है यार, और जैसे गाना प्ले होता है तो हम सभी लोग घर के बाहर आते ही है।

0: और यू नो व्हाट, ये जिंगल किसने गाई है पता है? ये जिंगल गाई है शान। जी हाँ, बॉलीवुड के सुपर डुपर हिट सिंगर शान की आवाज है। मुझे भी अभी पता चला था, आई थिंक मुझे बहुत लेट पता चला होगा ऐसा लगता है, और बहुतों को पता भी होगा, किसी को नहीं होगा तो पता चल जाएगा। और ये ऐसी जिंगल है ना भाई, अपने लवों पर ही आ ही जाती है। और आजकल हम सभी की नींद ना तो किसी अलार्म से नहीं बल्कि इस जिंगल की वजह से खुलती है। अपने शहर में ना तो सफाई भी आजकल बहुत दिख रही है, एंड ये जो घंटा गाड़ी है अब रात के वक्त भी और दिन भर भी हर एक गली मोहल्ले में आती है, कॉलोनी में आती है और पूरी सफाई करती है। इससे आई होप कि बहुत जल्दी अपना शहर भी एकदम साफ सुथरा हमें नजर आएगा। एक नंबर हुईल छत्रपति संभाजी नगर, सो स्टे ट्यून्ड।
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
2: हेलो, हाय, नमस्कार, छत्रपति संभाजी नगर,
3: तुम्ही ऐकत आहात MGM

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

पास आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: सोमवार है।
1: नमस्कार, छत्रपति संभाजी नगर
2: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8।